0: यो का ट्रेडिशनल मैंने कहे बिल्मा का के में एवरीडे 5 AM का 6 PM जिनाले ऑल रेडी होगा
1: तुन जवालो का 3 o'clock मिलमिट पा
2: यो बुकमार्क अरे आपको बीजे मनगोर का तेरा वाक तंदा आर्ट्स को का नुमका गामा 88.9 FM तो आई योलंग रेडियो यो